इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की। वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में। कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में। कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

होते। श्रोताओं, कबीर साहब आंतरिक साधना का रहस्य खोलते हुए कहते हैं, आशा के ईंधन करो। यह जो हमारे भीतर आशा यानी संसार के सुख पाने की अंतहीन आशाएं और तृष्णाएं हैं, उन्हें ज्ञान की अग्नि में जलाने के लिए ईंधन बना दो। अपनी तमाम आशाओं को स्वाहा कर दो। मनसा करो विभूति, और जब आशाएं जल जाएंगी तो जो मनसा यानी मन की कामनाएं और इच्छाएं हैं वे अपने राख हो जाएंगी। इसी आंतरिक वैराग्य की राख को अपने अंतकरण पर मलो।

0: भटकने के बजाय अपनी चेतना की फेरी यानी सुमिरन की निरंतर गश्त अपने ही घड के भीतर लगाओ। यों बिनना वो सूती जैसे जुलाहा ताने और बाने के धागों को एक दूसरे में पिरोकर सुंदर कपड़ा बुनता है, ठीक वैसे ही जब तुम्हारी आशाएं भस्म हो जाएंगी और ध्यान भीतर की तरफ मुड़ेगा, तब तुम्हारी आत्मा का सूत उस निराकार परमात्मा के साथ बिनना यानी पूरी तरह एकाकार होकर बुन जाएगा, जीव और शिव का भेद मिट जाएगा। यह दोहा चित्त वृत्ति विरोध और परम वैराग्य का शिखर है। कबीर यहाँ हठयोगियों की बाह्य क्रियाओं और आध्यात्मिक रूपक में बदल रहे हैं। आशा और मनसा ही संसार की उत्पत्ति का मूल कारण है। जब तक मन में भविष्य की आशाएं हैं, तब तक चेतना बाहरी संसार में भटकती रहेगी। कबीर समझा रहे हैं कि असली योग शरीर को तपाने में नहीं बल्कि इच्छाओं के समूल नाश में है। यो बिनना वो सूती कबीर के अपने बुनकर जीवन का एक अद्भुत प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जैसे कपड़े को बुन जाने के बाद धागे को कपड़े से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही जब इच्छाओं से मुक्त चेतना परमात्मा में बुन जाती हैं तो वह अखंड अद्वैत स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने भीतर झांक कर देखिए कि हम रोज किन किन आशाओं और कामनाओं का ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। हम दूसरों से, परिस्थितियों से जो अंतहीन उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्या वे हमारे दुखों को और नहीं बढ़ा रही? आज कोशिश कीजिए इस भीतरी चरखे को समझने की, अपनी बाहरी इच्छाओं को विवेक की अग्नि में झोंक दीजिए और शांत हो जाइए। अपनी बाहरी इच्छाओं को विवेक की अग्नि में झोंक दीजिए और शांत हो जाइए। अपने मन को उस राम की फेरी में लगाइए जो आपको हर पल सजग रखती हैं। जब आपकी चेतना परमात्मा के प्रेम में बुन जाएगी तो संसार का कोई भी अभाव आपको दुखी नहीं कर पाएगा और आप सहज ही परम आनंद के साम्राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।
2: बा तथागता, तुझा ध्यास, तुझा अभ्यास खोल खोल सखोल, तुझ्या शाश्वत संशोधनाआड येणारे राग द्वेष सर्व अडथळे मोहमायेचे कामवासनेचे कापलेस तू। कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, लोकोत्तर आणि पुन्हा पुन्हा उभा राहिलास आणि तेथेच्या साक्षीने। बा तथागता, शाक्य कोलियांचा पाणी प्रश्न संपल्याची आनंद वार्ता तुझ्याकडे आली। शाक्य कोलियांचा कलह संपला, पण म्हणून का तुझा शोध प्रवास थांबवणार? छेछे मुळीच नाही। तू चिंतन केलेस पुन्हा पुन्हा, तसा पुन्हा भिडलास नव्या दमानं शोधाला, सत्याच्या संशोधनाला, शाश्वत तत्वज्ञानाच्या आकलनाला। राजा बिंबिसार आला, तुझं देखणं रूप परिव्राजकाचं नाही म्हणाला। तुझ्या देखण्या शरीराची 32 लक्षणं, ते अजानबाहू, ती सुंदर दंतभक्ती पंक्ती आणि सुवर्णमय कांती एका वीर पुरुष सम्राटाची। सोड म्हणाला हा मार्ग, भौतिक सुखांच्या राशी पडतील तुझ्या पायाशी, त्यावर हे तथागता तू ठामपणे उत्तर दिलेस, जगातील कलह आणि दुःखे माझ्या समोर संशोधनासाठी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जैसे ही बात हम स्पिरिचुअलिटी की करते हैं या अध्यात्म की करते हैं, लगता है कि किसी और के बारे में बात की जाने वाली है, लेकिन जैसे ही बात अपने जीवन की हो रही होती है, तब हम सुनना चाहते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस नई श्रृंखला में, जिसमें हम बात जिंदगी की कर रहे हैं। और जहाँ अध्यात्म हुआ, जहाँ स्पिरिचुअलिटी हुई, वो सचमुच बात मेरी ही तो हो रही होती है। अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में हमने बात की थी खुशी की। सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसा लगता है कि हम खुश नहीं हैं। और एक बात जिस पर छूटी थी, वो बात जो कड़ी हमारी ख़त्म हुई थी, वो थी कि हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद यानी इस बॉडी या इस पर्सनालिटी का नहीं, बल्कि जो मैं हूँ, द बीइंग, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। कैसे रखना है वो ध्यान, और उसी से जुड़ी और कई सारी बातें इस पूरी श्रृंखला में हम करने वाले हैं। आज की कड़ी को शुरू करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी पर नजर डालते हैं, बहुत कुछ हमने एक नए अंदाज से देखने की कोशिश की, और जो बात आई थी कि सब कुछ हो रहा होता है, सबका ध्यान हम रखना चाहते हैं, कहीं आपने कहा कि हम ध्यान अपना नहीं रख पाते हैं। ध्यान अपना इन द सेंस खाना है, फिजिकली ड्रेस अच्छी पहननी है, मे आई शुड लुक गुड, परफेक्टली फाइन, सब कुछ है, वो रखते हैं, लेकिन
1: माय चेयर शुड बी कंफर्टेबल,
0: ओह यस, माय कार शुड बी, एयर कंडीशनिंग शुड बी परफेक्ट, यू नो, मुझे पसीने नहीं आने चाहिए, अनकंफर्टेबलनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन
1: विच इज वेरी गुड, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, मीन्स कंफर्टेबल होना चाहिए। शरीर के लिए कितना ध्यान रखते, कंफर्टेबल होना चाहिए। अब
0: मन कि मन के बारे में हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि मन के बारे में ध्यान रखना हमें आता ही नहीं शायद। एक यहाँ पे मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते कि हम खुश कितना हैं, लेकिन हम सब कुछ जो कर रहे हैं उसमें तो मुझे खुशी मिल रही है, फिर ध्यान कैसे नहीं रखते। मेरा बच्चा जब खाना खा लेता है, या मेरा बॉस मुझसे खुश हो जाता है, मैंने एक अच्छी सी अचीव कर ली अपनी कोई चीज़, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पेरेंट, अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ करके उनको देती हूँ और वो खुश होते हैं, आई फील वेरी गुड, यू नो, दिस गिव्स मी हैप्पीनेस। तो फिर कहाँ ध्यान नहीं रखा। मैंने जो सारी चीज़ें की, अपने वाइफ के लिए किया या अपने बच्चे के लिए किया, मुझे इसी में तो खुशी मिल रही है, तो फिर मेरे को क्यों है कि मैं, आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते, हम ध्यान तो रख रहे हैं।
1: आई डोंट नो, वी हैव टू, एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ। जो हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, यू और मी और एनीवन एल्स हैज नो राइट टू से कि हर एक का इंडेक्स क्या है। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, तब यही कहीं ना कहीं सबसे रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो जो होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं आ रहा। सो लेट्स नॉट मेक अ जनरलाइज स्टेटमेंट, लेकिन लेट एवरी वन जस्ट चेक फॉर देमसेल्फ्स, क्योंकि हो सकता है कि आई एम सेइंग कि आप खुश नहीं हो, बट एक्चुअली आप बहुत खुश हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये आपको किसी और से मिलने वाला पैरामीटर नहीं है। दिस इज वन थिंग जो सिर्फ आप और सिर्फ आप अंदर जानते हैं। कई बार स्पेशली आप जिस प्रोफेशन में है, लेट्स से आपका रोल है सारा दिन स्माइल करना, यू नो, ऑलवेज बी सो ब्यूटिफुल एनर्जेटिक, नॉट जस्ट ब्यूटिफुल लेकिन एनर्जेटिक, ऑन द फेस हैज टू बी ऑलवेज बहुत वेलकमिंग, बहुत, लेकिन हो सकता है आप अंदर आज खुश नहीं हो। इज दैट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल?
0: मैक्सिमम टाइम जस्ट
1: पॉसिबल। तो लेकिन इस वास्तविकता को कि आप अंदर कैसा फील कर रहे हो, सिर्फ आप जानते हो। क्योंकि आज जो एक बहुत कॉमन बात भी निकल कर आती कि मैं इतना कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा आज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम खुश नहीं है। एंड फिर हम साथ साथ ये भी कहते हैं, वो भी खुश नहीं है मेरे से।
0: एक्चुअली हमने सब कुछ किया, देख, एक्चुअली मेरी खुशी तब खत्म हुई कि मैंने कुछ किया उनके लिए। सपोज मैंने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज बनाई जो मैं चाहती हूँ, जो आई नो कि मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी और उन्हें अच्छा लगेगा। चाहे मैंने पिज्जा बनाया सपोज, और मैंने बनाया, उन्होंने खाया और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बड़ा खुश होकर बनाया था, लेकिन वो खुश नहीं हुए तो मैं भी खुश नहीं हुई, फिर मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू होता है।
1: आपने खुश होकर नहीं बनाया था, आपने बनाया था ये सोचकर कि जब वो खाएंगे तब वो खुश होंगे, वो खुश होंगे तो मैं खुश होंगे। इट्स अ डिफरेंस.
0: देखिए मैं बनाते वक्त ये सोच के खुश थी.
1: ये सोच के खुश थे कि वो खुश होंगे तो दिस विल गिव मी हैप्पीनेस. सो इट वाज अ प्रिपरेशन फॉर दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कि जब मैं आपके लिए यू नो हम क्या होता है हम एक पिक्चर ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं फ्यूचर की कि एक घंटे के बाद ये होगा ये मैं बनाऊंगी वहां लेकर जाऊंगी वो देखें. दैट इज व्हाट इट्स अ स्टिमुलेंट व्हिच इज गिविंग मी हैप्पीनेस कि वो सीन जो मुझे खुशी देने वाला है मैंने उस सीन को पहले से क्रिएट कर लिया. यू नो लेट्स से कि मैं आपको कुछ खिलाऊंगी आप बहुत खुश होंगे तो वो मुझे खुशी मिलेगी. लेकिन बनाते बनाते मैं वो सीन ऑलरेडी क्रिएट कर लेती हूँ. दिस इटसेल्फ शोज द पावर ऑफ द माइंड कि सिचुएशन अभी हुई भी नहीं है वो पिज्जा अभी बना भी नहीं है लेकिन वो जो मैं सीन क्रिएट कर लेती हूँ वो ऑलरेडी मुझे वो देना शुरू कर देता है. लेकिन साथ साथ मेरा माइंड ये भी प्रिपेयर होता जा रहा है ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगी ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगी. अब सपोज जो रियलिटी हुई वो उस इमेज के साथ मैच नहीं की. आपने जो इमेज यहाँ डेटा फीड कर दिया था वो ये था कि बच्चे खुश होंगे देन आई विल बी हैप्पी बट आपने कहा बच्चे खुश नहीं हुए तो फिर रिजल्ट क्या होगा उसका.
0: गुस्सा यू नो बिकॉज़ देयर इज सो मच ऑफ वन लेट डाउन की फीलिंग टू फ्रस्ट्रेशन and three you know मतलब एक एक ऐसा मतलब feeling of you know not being very happy actually.
1: हाँ तो आपने अपने mind को पहले condition किया ना. mind की इतनी तैयारी की थी कि ऐसे वो खाएंगे फिर उनको अच्छा लगेगा फिर वो मेरी praise करेंगे फिर वो खुश होंगे फिर मैं तो mind को पूरा क्या programming किया. this is also programming of the mind. mind को पूरा program किया कि ये instruction होगी फिर ये होगी फिर ये होगी result होगा happiness. तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोडिंग की हमने माइंड की वो क्या की कि डेटा ये होगा बच्चे खुश होंगे रिजल्ट ये होगा मैं खुश होंगी. जब डेटा चेंज हो गया कि बच्चे खुश नहीं हुए तो रिजल्ट भी तो चेंज हो जाएगा.
0: लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं थी और ये प्रोग्रामिंग मैंने कब की तुम्हें पता ही नहीं.
1: प्रोग्रामिंग पिज्जा बनाते टाइम.
0: हाँ
1: अभी तो कहा बनाते टाइम सी वी आर डूइंग द प्रोग्रामिंग. माइंड थोड़ी बना रहा है मैं बना रही हूँ लेकिन मन तो वो एंटिसिपेट कर रहा है ऑलरेडी उस सीन को क्रिएट कर रहा है. सो ये कोडिंग चल रही है मेरी लेकिन कोडिंग में इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं. यही अगर मैं कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दूं
0: और मैं कहूं कि अगर वो खुश ना भी हो तो कोई बात नहीं.
1: नहीं डोंट लाइक द कोडिंग
0: because I want them to be happy.
1: ये हो अगर मैं ये कोडिंग करूं कि मैं ऑलरेडी खुश हूं मैं बनाते हुए भी खुश हूँ उनको खिलाते हुए भी खुश हूँ. अगर उनको वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया दैट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टेस्ट दैट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस. मिक्स कर दिया ना मैंने दोनों चीजों को.
0: मेरी क्रेडिबिलिटी अब क्या कहीं ना कहीं आ गया.
1: हाँ तो ईगो पर तो वो टच हुआ लेकिन क्वेश्चन ऑफ टेस्ट है कि हो सकता है उनको वो पसंद नहीं आया. लेकिन जब मैंने रिएक्ट कर दिया उस बात को कि मैंने इतनी मेहनत की तुम्हारे लिए बनाया तुमको पसंद है तब वो पिज्जा तो रह गया साइड पे लेकिन तब जो सीन क्रिएट हो जाएगा बाद में सारा. तो बनाने क्या चले थे खुशी बनाने चले थे और हो गई कुछ और. तो ये जो कोडिंग हम माइंड की करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारा दिन जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते हैं इस पर रिजल्ट फिर बहुत डिपेंडेंट होता है. अभी हमारी कोडिंग ऐसे ही हुई हुई है कि ये होगा तो मैं खुश होंगी ये मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगी उनका फोन आएगा तो मैं खुश होंगे.
0: I want to do things for others, you know. Like so many times we feel that way. I want to do this for my husband. I want to do this for my mom. मतलब whatever.
1: To make them happy.
0: Yes.
1: Because when they are happy,
0: I'm happy.
1: I am happy. Right. So मैं आपके लिए ये करूँगी, ये करूँगी. And जो करने वाली हमारी list होती है, कई बार छोटी-छोटी चीजें होती हैं, लेकिन कई बार बहुत बड़ी-बड़ी भी चीजें होती हैं. They could mean big sacrifices in my personal decisions. हाँ. लेकिन they are all being done with this purpose कि मैं करूँगी, आप खुश होंगे, आप खुश होंगे, तो मैं खुश होंगे. अब ये equation ठीक है कि आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी लेकिन बाय चांस अगर दूसरा वाला नहीं खुश हुआ सामने वाला कोई अपनी ही टेंशन में है कोई अपनी चिंता में है. आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा कोई गिफ्ट लेकर आ गए. राइट जस्ट डे बिफोर यस्टरडे इट हैपेंड विद माय नेबर. उसके पास व्हीकल नहीं था वो दो बस चेंज करके बहुत मेहनत से अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट लेने गई बर्थडे के लिए. ठीक है लेकिन वो जो शर्ट लेकर आई बहुत एफर्ट किया मैंने एक्चुअली सॉ हर डूइंग ऑल दैट. लेकिन जो वो शर्ट लेकर आई तो उसके हस्बैंड को नहीं पसंद आई. ही सेड मैं रात को पहन कर सो जाऊं.
0: I know it's so hurting.
1: You see the what she goes through after that. The shirt to reh gayi side pe but the pain and the... So the question is, get that shirt, that pizza, that object, that activity.
0: But the other should be actually a little bit more, you know, considerate.
1: Haan, matlab hume dusron ko bolna chahiye, please mere se achhi tarah se baat karo. Again, dependency hai na ye. Aap khush ho jao, please, kyunki agar jab aap khush hoge, तब मैं खुश होंगी एंड देयर फोर ऑल्सो द ऑपोजिट कि जब आप उदास होगे या नाराज होगे या अपसेट होगे तो मैं भी हो जाऊंगी. सो समवेयर मैंने ये इक्वेशन क्रिएट कर ली है कि जब लोग मेरे आसपास जो खुश होंगे तब मैं खुश होंगी, तब मेरा वो प्रोसेस सारा स्टार्ट हो गया.
0: तो मतलब आसपास सब लोग दुखी रहे और मैं खुश हो जाऊं, ये संभव है?
1: We don't know, we'll explore during this whole journey. This is what it is all about. Kyunki, not that it is being selfish. It's like saying, agar mere aas paas sab bimar ho, to main theek rahu.
0: Of course.
1: Usme of course ho gaya fir. Abhi to hum keh rahe the ki jab aas paas hamare sab bimar honge, to mujhe bhi kaise hona chahiye?
0: बीमार तो मैं अपने आप ही हो जाती हूँ वैसे.
1: एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए कि जब मेरे आसपास लोग बीमार हैं,
0: I should be perfect.
1: और वो भी वो लोग जो मेरे एकदम क्लोज सर्कल में आते हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए भी मुझे पहले किसका ध्यान रखना पड़ता?
0: अपना.
1: फिजिकल लेवल पर भी सेम इक्वेशन अप्लाई करती, इमोशनल लेवल पर भी वही इक्वेशन अप्लाई करती है कि औरों को खुश करने के लिए सिर्फ एक्टिविटी पर नहीं ध्यान रखा जा सकता. कि ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी तो वो खुश हो जाएंगे, नहीं. मूल मंत्र है, मैं खुश रहूंगी
0: तो वो खुश होंगे. अरे कितनी बार तो हम कहते हैं कि तुम तो मुझे खुश देख ही नहीं सकते हो. यू नो सो मेनी टाइम्स वी टेल अदर्स कि यू कांट सी मी हैप्पी. द मोमेंट आई एम हैप्पी यू क्रिएट समथिंग माय हैप्पीनेस गो.
1: क्योंकि अगेन कितना डीप रूटेड बिलीफ है ना कि दूसरे के स्टेट ऑफ माइंड और बिहेवियर के ऊपर मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिपेंडेंट है. सपोज अब मैं बहुत अच्छे मूड में आई सुबह, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है और अब मैं भी डिस्टर्ब हो गई और फिर मैं उसका ब्लेम आपके ऊपर डालूं कि आपको तो बस अच्छा ही नहीं लगता कि मैं खुश हूं, आपने ऐसे इतनी रूडली बात कर दी कि मेरा मूड भी खराब हुआ. आपका मूड ठीक नहीं है, वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है. मैं अपना अपने ऊपर वो नहीं रख पाई कंट्रोल, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. व्हाट राइट डू आई हैव टू से टू अनदर पर्सन कि आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई. दिस इज ऑल हैपनिंग एंड उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी इक्वेशन इन लाइफ सेट नहीं है. हमने सोचा बाहर से जो एनर्जी आएगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट से आएगी, चाहे वो लोगों से आएगी, चाहे मेरे कोई काम से आएगी, वो जो एनर्जी बाहर से आएगी वो मेरे अंदर की एनर्जी क्रिएट करेगी. इसलिए आप अपनी वोकैबुलरी को अगर किसी भी दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, मैं ये करूँगी
0: तो खुश
1: होगा, ये होगा तो मैं खुश होंगी, बच्चे के 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होंगी, उसकी जॉब हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, मतलब कुछ बाहर होगा तब मैं खुश होंगी. सो द इक्वेशन इज आउटसाइड इन, आउटसाइड का प्रोडक्ट इनसाइड के एनर्जी क्रिएट करेगा.
0: पर ये ऐसा ही तो होता है शिवानी बहन, दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि होता है ना ऐसे. मतलब खुशी मुझे मिलती है इन सब चीजों से. अब अगर वो चीजें नहीं हो रही होगी तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ?
1: खुशी, अच्छा कौन सी चीजों से खुशी मिलती है?
0: अगेन यू नो लाइक अगर वो खुश हो रहे होंगे मेरा पिज्जा खा के, अगर वो खुश हुए तभी तो मैं खुश होंगी ना.
1: मैं खुश हुई इस थॉट को क्रिएट करके कि वो जो मैंने बनाया वो खाकर उनको अच्छा लगा. ये थॉट किसने क्रिएट किया? मैंने. अच्छा लेट्स से वो ही पिज्जा खा रहे हैं अभी अभी, वो बच्चे बहुत खुश हैं, उनको खुश देखकर आप बहुत खुश हो, एवरीवन इज वेरी हैप्पी एंड वन फोन कॉल एंड वन मैसेज. या किसी ने आपको, वो आप घर में हो बहुत खुश हो लेकिन आपके बॉस ने आपको फोन कर दिया और कहा कि आज जो आपने सारा काम ऑफिस में किया था उसमें ये गलती है.
0: बस खुशी गई.
1: अब पिज्जा तो वही है ना, बच्चे भी वही हैं, वो अभी भी खुश हैं. वेयर इज योर हैप्पीनेस गॉन?
0: तो दूसरी सिचुएशन होगी ना. इस सिचुएशन में तो मैं खुश थी ना, इस
1: सिचुएशन को टाइम तो नहीं लगा ना आके आपकी खुशी को वाइप आउट करने के लिए.
0: तो वो हर सिचुएशन अपने साथ क्या तो खुशी लेकर या गम लेकर आते.
1: या तो नाउ मेरी लाइफ किस पर डिपेंडेंट है?
0: सिचुएशंस
1: पर. सिचुएशंस में भी लोगों पर, लोगों के मूड पर, लोगों के टेम्परमेंट पर. मेरा टेम्परमेंट डिपेंडेंट है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड लोगों पर डिपेंडेंट है. हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी? मेरी फिजिकल हेल्थ, लेट्स कीप ऑन कंपेयरिंग इट बिकॉज तभी समझ में आता है. मेरी फिजिकल हेल्थ बाहर के मौसम, बाहर के इन्फेक्शन, बाहर के बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है.
0: तो मेरा रेजिस्टेंस पावर खत्म है.
1: एग्जैक्टली.
0: यू नो बिकॉज ये तो होता ही है, जब मेरी रेजिस्टेंस पावर खत्म होती है बॉडी की, तो मुझे सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, मुझे सारा बैक्टीरिया अटैक करता है, सारे वायरस आ जाते हैं.
1: बैक्टीरिया तो ऑलरेडी है, इन्फेक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर मैं अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखती हूँ, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखती हूँ, तो वो मुझ पर अटैक नहीं करता है. लेकिन जैसे ही मेरा इम्यूनिटी सिस्टम क्रैश किया, तो छोटा छोटा वायरस भी, थोड़ा सा मौसम का चेंज मेरे ऊपर,
0: एकदम से सर्दी जुकाम बुखार ये.
1: So here it is. I become either I'm strong or I become vulnerable. तो strong हूँ तो मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं आता. मौसम भले बदले, बाहर तूफान हो, बर्फ पड़े, I know how to take care of myself. लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं रखूँ और सिर्फ बोलती रहूँ मौसम ही ठीक नहीं है, सर्दी इतनी हो गई है या गर्मी इतनी हो गई है, तो बीमार तो पड़ना ही है, तो फिर बीमार रहिए. No problem. It's a choice. क्या बीमार रहना चाहते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं, दोनों चॉइस हमारे पास है.
0: हाँ, वेरी ट्रू. लेकिन हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है ना. यू नो व्हेन यू सेड कि इधर यू बिकम पावरफुल और यू रिमेन वल्नरेबल, सो बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू नो लाइक आई फील दैट दिस इज आई डोंट हैव द पावर, यू नो, कि मेरे को वो सिचुएशंस अफेक्ट ना करें या मेरी खुशी को ना यू नो उस पर ना कुठाराघात करें. तो इसीलिए वो मैं वल्नरेबल हूँ. मैं आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. एक्चुअली वी ऑल अंडरस्टैंडिंग कि फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, कि वी एक्चुअली आर वल्नरेबल, यू नो, चाहे वो फिजिकल है या मेंटल या खुशी की बात है. हम कर क्या सकते हैं?
1: जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं
0: वैसे
1: ही हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है. ये उस टाइम नहीं होगा जब परिस्थिति आएगी. आप अपने शरीर के अंदर ताकत तब नहीं भरते जिस क्षण मौसम बदलता है, लेकिन आप एवरीडे डेली बेसिस पर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो बाहर कितना भी परिवर्तन आए, बाहर का परिवर्तन अंदर परिवर्तन नहीं क्रिएट कर देता. यू सी, शरीर फिर भी उस शरीर के अंदर पावर है कि वो बाहर के परिवर्तन के साथ अडेप्ट करके
0: अपना चल जाता है. अपना
1: अगर बाहर से इन्फेक्शन आ रही है लेकिन शरीर के अंदर भी वो
0: एंटीबायोटिक्स है, हाँ, वो जो
1: उसको फाइट करेंगे और फिनिश कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं. इसी तरह अगर जैसे शरीर का ध्यान इतना रखते हैं, तो ये सारी चीजें कब आती कब चली जाती पता भी नहीं चलता. अगर मन का भी उसी तरह से ध्यान रखेंगे, हर रोज इसकी सफाई करते रहेंगे, इसको नरिशमेंट देंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो कब क्या बाहर होता जाएगा, आएगा, चला जाएगा, हम उस सीन को क्रॉस करते जाएंगे. फिर आप वो वाला नहीं सेंटेंस बोलेंगे कि अभी अभी अच्छा फिर अभी अभी खराब. दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग. सी, दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग एक्चुअली, कि जैसी सिचुएशन वैसे मेरी हैप्पीनेस, कभी ऊपर कभी नीचे. क्यों? क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग आउटसाइड. अपने आप में इसके अंदर कोई पावर नहीं है. आप अच्छा बोलो तो मैं खुश, आप नहीं बोलो तो मैं नहीं खुश. तो मैं सारा दिन क्या करती रहती हूँ, आपको प्लीज करने की कोशिश करती रहती हूँ, ताकि आप मेरे से अच्छा बोलते रहेंगे. क्योंकि एवरीथिंग आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस. एक्चुअली एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस, लेकिन प्रोबेबली वेयर आई एम डूइंग इट इज समवेयर, यू नो. तो फिर क्या

0: देगा। ये सब बैक्टीरिया ही तो है जो बाहर से आता है, ये परिवर्तन ही तो है जो सारा बाहर से आ रहा है। आज बच्चे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, कल सडनली रिएक्ट कर गए, कुछ रूडली बोल दिया, कुछ हो गया, परिवर्तन है ना, मौसम में बदलाव आया है। लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है उस बदलाव को फेस करने की, तो जैसे ही वो परिवर्तन
1: क्या हुआ, मतलब मौसम के बारिश और व्यवहार की जो बारिश है उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि मौसम की बारिश के लिए मैं छाता लेके जा सकती हूँ, मैं रेनकोट पहन सकती हूँ,
0: प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना,
1: घर से बाहर ना निकलूं।
0: जो छाता नहीं लेके जाता
1: वो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ
0: पेड़ के थ्रू भी उसको लाइटिंग हिट की तो। सो जो नहीं प्रोटेक्ट करेगा वो तो सफर करेगा ना, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल। अभी हम बोल रहे हैं कि फिजिकल तो बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत इजी लगती है। सेम थिंग कैन हैपन विद इमोशनल प्रोटेक्शन। इमोशनल प्रोटेक्शन भी जब हम अपनी करेंगे तब भी यही लगेगा, तो क्या हुआ उन्होंने रूडली बात कर दी तो।
1: किसी ने मेरे साथ गंदे तरीके से बात की, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे इंसल्ट कर दी, मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे हर्ट नहीं होगा?
0: या डोंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योरसेल्फ? यस, जस्ट हैव टू टेक केयर। एक दिन ध्यान रख के देखना है कि कैन आई डू दैट, या क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि हर एक के व्यवहार को अपने ऊपर हावी होने देता हूँ। क्योंकि इन टूडेज टाइम इट इज रिस्की, इट इज रिस्की अगर हम अपना कंट्रोल सारा बाहर दे देंगे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं।
1: Yes, we always say ना, you never know दूसरे व्यक्ति कैसे रिएक्ट करने वाला।
0: Exactly, now that's the point. सबके व्यवहार आज बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। मतलब बाहर तो क्यों जाना, अपने घर के अंदर भी अगर हम देखें तो सडनली ये बैठे बैठे अभी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इनको क्या हो गया? क्योंकि हर एक के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और वो कई बार एकदम से, तो लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं, रिएक्शंस हैं, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गए हैं। अब मेरा रिस्पॉन्स आपके रिस्पॉन्स पे क्योंकि डिपेंडेंट है, तो आप जब अनप्रडिक्टेबल होते हो तो मेरा क्या हाल होगा अंदर?
1: हाँ, मैं और इनफैक्ट मैंने तैयारी नहीं की हुई होती।
0: मौसम को देखो, मौसम हमें पता है अब गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, फिर ये आएगा, फिर विंटर आएगा, तो इट्स इजी टू मैनेज। जिस दिन मौसम अनप्रडिक्टेबल हो जाए कि अभी अभी गर्मी है, आधे घंटे में बारिश होने लग गई, उसके आधे घंटे में सपोज बहुत ठंड हो गई, तो विल वी बी प्रिपेयर्ड? नो, वी विल से ये क्या हो रहा है, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर, यू नो, वी विल से आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर्स फ्रॉम पीपल। और उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट अब हो गया है कि मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा पहले, बिकॉज येस थिंग्स आर, क्योंकि हर एक के जीवन में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हर एक ने अपने स्टेट ऑफ माइंड का कंट्रोल सिचुएशन पर दिया हुआ है। जितनी सिचुएशन रैपिडली चेंज होती जा रही है, स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता जा रहा है, और जितना उनका चेंज होता जा रहा है, मेरा चेंज होता जा रहा है, आप सोचो इसकी क्या हालत होती होगी। सारा दिन ये मन सिचुएशंस को भी फेस करता, लोगों के भी रिस्पॉन्सेस को फेस करता, फिर जितना आपका अनप्रडिक्टेबल उतना फिर मेरा भी अनप्रडिक्टेबल, फिर मेरा अनप्रडिक्टेबल, तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे
1: वो इतना, हाँ, अगेन यू नो, और सच बात तो ये है कि कई बार हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है।
0: आप बच्चे के साथ देखो अपना, ठीक है, बच्चा अपने कोई यू नो टीनेज फेज में है, उसके स्कूल में कुछ आज हुआ, कोई बात हो गई, उसने नहीं बताया आपको आकर, लेकिन उसके माइंड में कुछ चल रहा है। अब आपने तो थोड़ा सा कुछ कहा, जो आप हर रोज ही कहते हो वो बहुत प्यार से सुन लेते हैं, लेकिन आज सडनली उसने रिएक्ट कर दिया, दैट इज देयर अनप्रडिक्टेबिलिटी। लेकिन आप अगर अपना ध्यान रख लेते उस टाइम, तो सिचुएशन वहां की वहां ठीक हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। लेकिन वो अनप्रडिक्टेबल ऐसे बात की मेरे से, ये कोई बात करने का तरीका, तुमको हुआ क्या है, तो मेरा भी रिस्पॉन्स उसके ऊपर, तुम तो हो ही ऐसे गए हो, बिगड़ गए हो, ये तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही खराब, यू नो, वी कैन जस्ट गो टू सेइंग एनीथिंग टू देम। अब एक तो वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है अंदर से, फिर उसको पता है उसने गलत तरह से व्यवहार किया, उसका गिल्ट, फिर आपका गुस्सा ऊपर से, तो उसका नेक्स्ट रिस्पॉन्स कैसा होगा? सो यूर हैंडलिंग ईच अदर्स रिस्पॉन्सेस की बजाय अगर हम अपने रिस्पॉन्स की तरफ ध्यान दे, अपने रिस्पॉन्स को हैंडल करे, तो सामने वाले को हैंडल करना
1: लेकिन दूसरे को सुधारना नहीं है, मतलब उसे समझाना तो पड़ेगा. आपने ये कह तो दिया कि उसका अपना गिल्ट, बट वी नेवर फील कि वो गिल्ट फील कर रहा है.
0: यू हैव टू वन स्टॉप एंड आस्क. जब भी आप, चलो दूसरे को छोड़ो, अपना देखो. जब आप गुस्सा करोगे किसी पर, बच्चे पर, हस्बैंड पर या किसी पर, उसके बाद आपको कितना अच्छा फील होता है उसके बाद.

0: तो आप ऑलरेडी अपने उस उसमें गुजर रहे हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था अननेसेसरली पूरा घर का वातावरण कर, तो वो गिल्ट ही तो है ना. और उस गिल्ट में फिर सामने वाले ने
1: कुछ गलत
0: गुस्सा भी कह दिया, फिर ऊपर से ब्लेम भी डाल दिया आपके ऊपर. हाउ फार आर वी एबल टू हैंडल ऑल दिस? एंड ऑल दिस वी से इसलिए हुआ क्योंकि उसने ठीक से बात नहीं की, तो पूरे सिनारियो का ब्लेम भी हम तुरंत उसके ऊपर डाल देते, भले उसने ठीक से बात नहीं की, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट. ठीक है, उसने किस तरह से बॉल मारी, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट, नाउ आई हैड द पावर. अगर मैंने उसको ठीक से हैंडल कर लिया होता, सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग एल्स ऑल टुगेदर.
1: व्हाट नीड्स टू बी डन देन?
0: स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. यस, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू सी हाउ टू डू, कि जो हमने फोकस चेंज कर दिया था, जो आपने लास्ट टाइम भी कहा कि सिचुएशन पे ध्यान देना है, ये करना है, ये करना है, तो मेरा अपना खुशी और ये सब तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं आ रही. तो ये सब ध्यान देते देते दूसरों का जो इश्यूज उठ रहे हैं सारे, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको लास्ट प्रायोरिटी पर रखा कि मैं खुश नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मुझे काम तो करने दो.
1: Show must go on even if I'm not happy.
0: Yeah,
1: yes.
0: The show is going on, but then look at the quality of the show. So somewhere I will have to stop and say, first I have to be happy, then take care of the show. Pehle I have to be healthy, phir baki jo ye drama enact hota hai hamare jeevan mein sara din, it's just a drama. Every scene I am enacting, quality dekho kya hoti ja rahi hai, aur phir bhi usko घसीटते जा रहे हैं. एक दिन भी रुक कर हमारे माइंड में ये थॉट नहीं चलता कभी कि ये क्या होता है हमारे घर में रोज, क्यों हम हर रोज एक दूसरे के साथ इस तरह से करते हैं. इज देयर अ वे आउट? क्या कोई और तरीका है जीवन जीने का, या दिस इज द वे?
1: Wonderful. Somewhere we need to actually do this analysis within, और ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं. सुजय शिवानी, बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन एक अवेयरनेस, एक पहला जो पॉज है वो लेने का वक्त आ गया है कि हम खड़े होकर ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं. और जैसा आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, हर सिचुएशन में ये देखें कि हम चाह क्या रहे थे. हमने हर सिचुएशन, हर काम इसलिए किया कि हम खुशी चाहिए थी, या इट विल गिव मी हैप्पीनेस, यू नो, इट विल गिव अदर्स हैप्पीनेस, इट विल गिव मी हैप्पीनेस. सो अगेन माय डिपेंडेंसी, माय लाइक खुशी लेने की जो डिपेंडेंसी थी वो सब पे पहुंचती जा रही थी, और वहीं जो है वो बार बार कभी हाँ कभी ना कभी ऐसा चलता जा रहा था. अगेन करना क्या है ये वक्त बताएगा, आने वाली कड़ियाँ बताएंगी, लेकिन आज की इस बातचीत के लिए एटलीस्ट एक पॉज हमें लेने के लिए प्रेरित करने के लिए थैंक यू सो मच.
0: ओम शांति.
1: कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं. ये एक ऐसा मंच है जिस पर खुली बात होती है, तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris में हैप्पीनेस इंडेक्स चेक हो रहा है इन दिनों, तो आप भी सफर में हमारे साथ रहिएगा. कौन सी ऐसी बातें हैं, किन बातों का ध्यान रखने के बाद हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं, आने वाली कड़ियों में जानेंगे. अभी विदा लेते हैं. ओम शांति.

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: दें। श्रोताओं, कबीर साहब आंतरिक साधना का रहस्य खोलते हुए कहते हैं, आशा की ईंधन करो। यह जो हमारे भीतर आशा यानी संसार के सुख पाने की अंतहीन आशाएं और तृष्णाएं हैं, उन्हें ज्ञान की अग्नि में जलाने के लिए ईंधन बना दो। अपनी तमाम आशाओं को स्वाहा कर दो। मनसा करो विभूति, और जब आशाएं जल जाएंगी तो जो मनसा यानी मन की कामनाएं और इच्छाएं हैं वे अपने राख हो जाएंगी। इसी आंतरिक वैराग्य की राख को अपने अंतकरण पर मलो, यही तुम्हारी असली विभूति यानी भस्म है। जब यह भीतरी भस्म तैयार हो जाए तब क्या करना है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, जोगी फेरी फिल करो। हे साधक रूपी जोगी, अब तुम इस संसार के मोह जाल में भटकने के बजाय अपनी चेतना की फेरी यानी सुमिरन की निरंतर गश्त अपने ही खड के भीतर लगाओ। यो बिनना वो सूती जैसे जुलाहा ताने और बाने के धागों को एक दूसरे में पिरोकर सुंदर कपड़ा बुनता है, ठीक वैसे ही जब तुम्हारी आशाएं भस्म हो जाएंगी और ध्यान भीतर की तरफ मुड़ेगा तब तुम्हारी आत्मा का सुत उस निराकार परमात्मा के साथ बिनना यानी पूरी तरह एकाकार होकर बुन जाएगा। जीव और शिव का भेद मिट जाएगा। यह दोहा चित्त वृत्ति विरोध और परम वैराग्य का शिखर है। कबीर यहाँ हठयोगियों की बाह्य क्रियाओं और आध्यात्मिक रूपक में बदल रहे हैं। आशा और मनसा ही संसार की उत्पत्ति का मूल कारण है। जब तक मन में भविष्य की आशाएं हैं तब तक चेतना बाहरी संसार में भटकती रहेगी। कबीर समझा रहे हैं कि असली योग शरीर को तपाने में नहीं बल्कि इच्छाओं के समूल नाश में है। यो बिनना वो सूती कबीर के अपने बुनकर जीवन का एक अद्भुत प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जैसे कपड़े को बुन जाने के बाद धागे को कपड़े से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही जब इच्छाओं से मुक्त चेतना परमात्मा में बुन जाती हैं तो वह अखंड अद्वैत स्थिति को प्राप्त कर लेती हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने भीतर झांक कर देखिए कि हम रोज किन किन आशाओं और कामनाओं का ईंधन इकट्ठा कर रहे हैं। हम दूसरों से, परिस्थितियों से जो अंतहीन उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्या वे हमारे दुखों को और नहीं बढ़ा रही? आज कोशिश कीजिए इस भीतरी चरखे को समझने की। अपनी बाहरी इच्छाओं को विवेक की अग्नि में झोंक दीजिए और शांत हो जाइए। अपने मन को उस राम की फेरी में लगाइए जो आपको हर पल सजग रखती हैं। जब आपकी चेतना परमात्मा के प्रेम में बुन जाएगी तो संसार का कोई भी अभाव आपको दुखी नहीं कर पाएगा और आप सहज ही परम आनंद के साम्राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: आपन ट्यून केला आहे रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आपला खानदेश, आपली माणसं।
2: वा तथागता, तुझा ध्यास, तुझा अभ्यास खोल खोल सखोल, तुझ्या शाश्वत संशोधनाआड येणारे राग द्वेष सर्व अडथळे मोहमायेचे कामवासनेचे कापलेस तू। कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर, लोकोत्तर आणि पुन्हा पुन्हा उभा राहिलास आणि तेथेच्या साक्षीने। बा तथागता, शाक्य कोलियांचा पाणी प्रश्न संपल्याची आनंद वार्ता तुझ्याकडे आली. शाक्य कोलियांचा कलह संपला, पण म्हणून का तुझा शोध प्रवास थांबवणार? छेछे मुळीच नाही. तू चिंतन केलेस पुन्हा पुन्हा, तसा पुन्हा भिडलास नव्या दमानं शोधाला.

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जैसे ही बात हम स्पिरिचुअलिटी की करते हैं या अध्यात्म की करते हैं, लगता है कि किसी और के बारे में बात की जाने वाली है, लेकिन जैसे ही बात अपने जीवन की हो रही होती है, तब हम सुनना चाहते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं इस नई श्रृंखला में, जिसमें हम बात जिंदगी की कर रहे हैं। और जहाँ अध्यात्म हुआ, जहाँ स्पिरिचुअलिटी हुई, वो सचमुच बात मेरी ही तो हो रही होती है। अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में हमने बात की थी खुशी की। सब कुछ होते हुए भी कभी ऐसा लगता है कि हम खुश नहीं हैं। और एक बात जिस पर छूटी थी वो बात, जो कड़ी हमारी ख़त्म हुई थी, वो थी कि हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद यानी इस बॉडी या इस पर्सनालिटी का नहीं, बल्कि जो मैं हूँ, द बीइंग, उसका ध्यान नहीं रखते हैं। कैसे रखना है वो ध्यान, और उसी से जुड़ी और कई सारी बातें इस पूरी श्रृंखला में हम करने वाले हैं। आज की कड़ी को शुरू करते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछली कड़ी पर नज़र डालते हैं, बहुत कुछ हमने एक नए अंदाज से देखने की कोशिश की, और जो बात आई थी कि सब कुछ हो रहा होता है, सबका ध्यान हम रखना चाहते हैं, कहीं आपने कहा कि हम ध्यान अपना नहीं रख पाते हैं। ध्यान अपना इन द सेंस खाना खाना है, फिजिकली ड्रेस अच्छी पहननी है, मे आई शुड लुक गुड, परफेक्टली फाइन, सब कुछ है, वो रखते हैं, लेकिन
1: माय चेयर शुड बी कंफर्टेबल,
0: ओह यस, माय कार शुड बी, एयर कंडीशनिंग शुड बी परफेक्ट, यू नो, मुझे पसीने नहीं आने चाहिए, अनकंफर्टेबलनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन
1: विच इज वेरी गुड, सी व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, मीन्स कंफर्टेबल होना चाहिए। शरीर के लिए कितना ध्यान रखते, कंफर्टेबल होना चाहिए। अब
0: मन कि मन के बारे में हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि मन के बारे में ध्यान रखना हमें आता ही नहीं शायद। एक यहाँ पे मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते कि हम खुश कितना हैं, लेकिन हम सब कुछ जो कर रहे हैं उसमें तो मुझे खुशी मिल रही है, फिर ध्यान कैसे नहीं रखते? मेरा बच्चा जब खाना खा लेता है, या मेरा बॉस मुझसे खुश हो जाता है, मैंने एक अच्छी सी अचीव कर ली अपनी कोई चीज़, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पेरेंट, अगर मैं कुछ ऐसी चीज़ करके उनको देती हूँ और वो खुश होते हैं, आई फील वेरी गुड, यू नो, दिस गिव्स मी हैप्पीनेस। तो फिर कहाँ ध्यान नहीं रखा? मैंने जो सारी चीज़ें की, अपने वाइफ के लिए किया या अपने बच्चे के लिए किया, मुझे इसी में तो खुशी मिल रही है, तो फिर मेरे को क्यों है कि मैं, आपने कहा कि हम ध्यान नहीं रखते, हम ध्यान तो रख रहे हैं।
1: आई डोंट नो, वी हैव टू, एवरीवन हैज टू आस्क देमसेल्फ। जो हैप्पीनेस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, यू और मी और एनीवन एल्स हैज नो राइट टू से कि हर एक का इंडेक्स क्या है, लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं, सबसे मिलते हैं, तब यही कहीं ना कहीं सबसे रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो जो होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं आ रहा। सो लेट्स नॉट मेक अ जनरलाइज स्टेटमेंट, लेकिन लेट एवरी वन जस्ट चेक फॉर देमसेल्फ्स, क्योंकि हो सकता है कि आई एम सेइंग कि आप खुश नहीं हो, बट एक्चुअली आप बहुत खुश हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये आपको किसी और से मिलने वाला पैरामीटर नहीं है। दिस इज वन थिंग जो सिर्फ आप और सिर्फ आप अंदर जानते हैं। कई बार स्पेशली आप जिस प्रोफेशन में है, लेट्स से आपका रोल है सारा दिन स्माइल करना, यू नो, ऑलवेज बी सो ब्यूटिफुल एनर्जेटिक, नॉट जस्ट ब्यूटिफुल लेकिन एनर्जेटिक, ऑन द फेस हैज टू बी ऑलवेज बहुत वेलकमिंग, बहुत, लेकिन हो सकता है आप अंदर आज खुश नहीं हो, इज दैट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल?
0: मैक्सिमम टाइम्स इट्स
1: पॉसिबल, तो लेकिन इस वास्तविकता को कि आप अंदर कैसा फील कर रहे हो सिर्फ आप जानते हो। क्योंकि आज जो एक बहुत कॉमन बात भी निकल कर आती कि मैं इतना कर रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा आज करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हम खुश नहीं हैं, एंड फिर हम साथ साथ ये भी कहते हैं वो भी खुश नहीं है मेरे से।
0: एक्चुअली हमने सब कुछ किया, देख, एक्चुअली मेरी खुशी तब खत्म हुई कि मैंने कुछ किया उनके लिए। सपोज मैंने बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज बनाई जो मैं चाहती हूँ, जो आई नो कि मैं बहुत अच्छा बनाऊंगी और उन्हें अच्छा लगेगा। चाहे मैंने पिज्जा बनाया सपोज, और मैंने बनाया, उन्होंने खाया और उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बड़ा खुश होकर बनाया था, लेकिन वो खुश नहीं हुए तो मैं भी खुश नहीं हुई, फिर मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू होता है।
1: आपने खुश होकर नहीं बनाया था, आपने बनाया था ये सोचकर कि जब वो खाएंगे तब वो खुश होंगे, वो खुश होंगे तो मैं खुश होंगे, इट्स अ डिफरेंस.
0: देखिए मैं बनाते वक्त ये सोच के खुश थी.
1: हाँ, ये सोच के खुश थे कि वो खुश होंगे तो दिस विल गिव मी हैप्पीनेस. सो इट वाज अ प्रिपरेशन फॉर दैट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस कि जब मैं आपके लिए यू नो हम क्या होता है हम एक पिक्चर ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं फ्यूचर की कि एक घंटे के बाद ये होगा ये मैं बनाऊंगी वहां लेकर जाऊंगी वो देखें. दैट इज व्हाट इट्स अ स्टिम्युलेंट व्हिच इज गिविंग मी हैप्पीनेस कि वो सीन जो मुझे खुशी देने वाला है मैंने उस सीन को पहले से क्रिएट कर लिया. यू नो लेट्स से कि मैं आपको कुछ खिलाऊंगी आप बहुत खुश होंगे तो वो मुझे खुशी मिलेगी. लेकिन बनाते बनाते मैं वो सीन ऑलरेडी क्रिएट कर लेती हूँ. दिस इटसेल्फ शोज द पावर ऑफ द माइंड कि सिचुएशन अभी हुई भी नहीं है वो पिज्जा अभी बना भी नहीं है लेकिन वो जो मैं सीन क्रिएट कर लेती हूँ वो ऑलरेडी मुझे वो देना शुरू कर देता है. लेकिन साथ साथ मेरा माइंड ये भी प्रिपेयर होता जा रहा है ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगे ऐसे वो खुश होंगे फिर मैं खुश होंगे. अब सपोज जो रियलिटी हुई वो उस इमेज के साथ मैच नहीं की. आपने जो इमेज यहाँ डेटा फीड कर दिया था वो ये था कि बच्चे खुश होंगे देन आई विल बी हैप्पी बट आपने कहा बच्चे खुश नहीं हुए तो फिर रिजल्ट क्या होगा उसका.
0: गुस्सा यू नो बिकॉज़ देयर इज सो मच ऑफ वन लेट डाउन की फीलिंग टू फ्रस्ट्रेशन and three you know मतलब एक एक ऐसा मतलब feeling of you know not being very happy actually.
1: हाँ तो आपने अपने mind को पहले condition किया ना. mind की इतनी तैयारी की थी कि ऐसे वो खाएंगे फिर उनको अच्छा लगेगा फिर वो मेरी praise करेंगे फिर वो खुश होंगे फिर मैं तो mind को पूरा क्या programming किया. this is also programming of the mind. mind को पूरा program किया कि ये instruction होगी फिर ये होगी फिर ये होगी result होगा happiness. तो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कोडिंग की हमने माइंड की वो क्या की कि डेटा ये होगा बच्चे खुश होंगे रिजल्ट ये होगा मैं खुश होंगी. जब डेटा चेंज हो गया कि बच्चे खुश नहीं हुए तो रिजल्ट भी तो चेंज हो जाएगा.
0: लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं थी और ये प्रोग्रामिंग मैंने कब की तुम्हें पता नहीं.
1: प्रोग्रामिंग पिज्जा बनाते टाइम.
0: हाँ
1: अभी तो कहा बनाते टाइम सी वी आर डूइंग द प्रोग्रामिंग. माइंड थोड़ी बना रहा है मैं बना रही हूँ लेकिन मन तो वो एंटिसिपेट कर रहा है ऑलरेडी उस सीन को क्रिएट कर रहा है. सो ये कोडिंग चल रही है मेरी लेकिन कोडिंग में इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हैं. यही अगर मैं कोडिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर दूं
0: और मैं कहूं कि अगर वो खुश ना भी हो तो कोई बात
1: नहीं. नहीं डोंट लाइक द कोडिंग
0: because I want them to be happy.
1: yeah. ये हो अगर मैं ये कोडिंग करूं कि मैं ऑलरेडी खुश हूँ मैं बनाते हुए भी खुश हूँ उनको खिलाते हुए भी खुश हूँ. अगर उनको वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया दैट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टेस्ट दैट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस. मिक्स कर दिया ना मैंने दोनों चीजों को.
0: मेरी क्रेडिबिलिटी भी कहीं ना कहीं आ गया.
1: हाँ तो ईगो पर तो वो टच हुआ लेकिन क्वेश्चन ऑफ टेस्ट है कि हो सकता है उनको वो पसंद नहीं आया. लेकिन जब मैंने रिएक्ट कर दिया उस बात को कि मैंने इतनी मेहनत की तुम्हारे लिए बनाया तुमको पसंद है तब वो पिज्जा तो रह गया साइड पे लेकिन तब जो सीन क्रिएट हो जाएगा बाद में सारा. तो बनाने क्या चले थे खुशी बनाने चले थे और हो गई कुछ और. तो ये जो कोडिंग हम माइंड की करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सारा दिन जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते हैं इस पर रिजल्ट फिर बहुत डिपेंडेंट होता है. अभी हमारी कोडिंग ऐसे ही हुई हुई है कि ये होगा तो मैं खुश होंगी ये मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगी उनका फोन आएगा तो मैं खुश होंगे.
0: I want to do things for others, you know. Like so many times we feel that way. I want to do this for my husband. I want to do this for my mom. मतलब whatever.
1: To make them happy.
0: Yes.
1: Because when they are happy,
0: I am happy.
1: Right. So मैं आपके लिए ये करूंगी and जो करने वाली हमारी list होती है कई बार छोटी छोटी चीजें होती हैं लेकिन कई बार बहुत बड़ी बड़ी भी चीजें होती हैं. They could mean big sacrifices in my personal decisions. हाँ लेकिन they are all being done with this purpose कि मैं करूंगी आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगे. अब ये इक्वेशन ठीक है कि आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी लेकिन बाय चांस अगर दूसरा वाला नहीं खुश हुआ सामने वाला कोई अपने ही टेंशन में है कोई अपनी चिंता में है. आप अपने हस्बैंड के लिए बहुत अच्छा कोई गिफ्ट लेकर आ गए राइट. जस्ट डे बिफोर यस्टरडे इट हैपेंड विद माय नेबर. उसके पास व्हीकल नहीं था वो दो बस चेंज करके बहुत मेहनत से अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट लेने गई बर्थडे के लिए ठीक है. लेकिन वो जो शर्ट लेकर आई बहुत एफर्ट किया मैंने एक्चुअली सॉ हर डूइंग ऑल दैट. लेकिन जो वो शर्ट लेकर आए तो उसके हस्बैंड को नहीं पसंद आई. ही सेड मैं रात को पहन कर सो जाऊँ.
0: I know it's so hurting.
1: You see the what she goes through after that. तो शर्ट तो रह गई साइड पे but the pain and the... So the question is, kid, that shirt, that pizza, that object, that activity.
0: But the other should be actually a little bit more, you know, considerate.
1: Haan, matlab hume dusron ko bolna chahiye, please mere se achhi tarah se baat karo. Again, dependency hai na ye. Aap khush ho jao, please, kyunki agar jab aap khush hoge, तब मैं खुश होंगे एंड देयर फोर ऑल्सो दी ऑपोजिट के जब आप उदास हो गए या नाराज हो गए या अपसेट हो गए तो मैं भी हो जाऊंगी. सो समवेयर मैंने ये इक्वेशन क्रिएट कर ली है कि जब लोग मेरे आसपास जो खुश होंगे तब मैं खुश होंगी, तब मेरा वो प्रोसेस सारा स्टार्ट हो गया.
0: तो मतलब आसपास सब लोग दुखी रहे और मैं खुश हो जाऊं, ये संभव है?
1: We don't know, we'll explore during this whole journey. This is what it is all about. Kyunki, not that it is being selfish. It's like saying, agar mere aas paas sab bimar ho, to main theek rahu.
0: Of course.
1: Usme of course ho gaya phir. Abhi to hum keh rahe the ki jab aas paas hamare sab bimar honge, to mujhe bhi kaise hona chahiye?
0: बीमार तो मैं अपने आप ही हो जाती हूँ वैसे.
1: एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए कि जब मेरे आसपास लोग बीमार हैं,
0: I should be perfect.
1: और वो भी वो लोग जो मेरे एकदम क्लोज सर्कल में आते हैं, तो उनका ध्यान रखने के लिए भी मुझे पहले किसका ध्यान रखना पड़ता?
0: अपना.
1: फिजिकल लेवल पर भी सेम इक्वेशन अप्लाई करती, इमोशनल लेवल पर भी वही इक्वेशन अप्लाई करती है कि औरों को खुश करने के लिए सिर्फ एक्टिविटी पर नहीं ध्यान रखा जा सकता. कि ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी तो वो खुश हो जाएंगे, नहीं. मूल मंत्र है, मैं खुश रहूंगी
0: तो वो खुश होंगे. अरे कितनी बार तो हम कहते हैं कि तुम तो मुझे खुश देख ही नहीं सकते हो. यू नो सो मेनी टाइम्स वी टेल अदर्स कि यू कांट सी मी हैप्पी. द मोमेंट आई एम हैप्पी यू क्रिएट समथिंग माय हैप्पीनेस गो.
1: क्योंकि अगेन कितना डीप रूटेड बिलीफ है ना कि दूसरे के स्टेट ऑफ माइंड और बिहेवियर के ऊपर मेरा स्टेट ऑफ माइंड डिपेंडेंट है. सपोज अब मैं बहुत अच्छे मूड में आई सुबह, लेकिन आपका मूड ठीक नहीं है और अब मैं भी डिस्टर्ब हो गई और फिर मैं उसका ब्लेम आपके ऊपर डालूं कि आपको तो बस अच्छा ही नहीं लगता कि मैं खुश हूं, आपने ऐसे इतनी रूडली बात कर दी कि मेरा मूड भी खराब हुआ. आपका मूड ठीक नहीं है, वो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है. मैं अपना अपने ऊपर वो नहीं रख पाई कंट्रोल, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. व्हाट राइट डू आई हैव टू से टू अनदर पर्सन कि आपकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गई, दिस इज ऑल हैपनिंग, एंड उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी इक्वेशन इन लाइफ सेट नहीं है. हमने सोचा बाहर से जो एनर्जी आएगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट से आएगी, चाहे वो लोगों से आएगी, चाहे मेरे कोई काम से आएगी, वो जो एनर्जी बाहर से आएगी वो मेरी अंदर की एनर्जी क्रिएट करेगी. इसलिए आप अपनी वोकैबुलरी को अगर किसी भी दिन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, मैं ये करूँगी
0: तो खुश
1: खुश होगा, ये होगा तो मैं खुश होंगी, बच्चे के 90% मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होंगी, उसकी जॉब हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, मतलब कुछ बाहर होगा
0: तब मैं खुश होंगी,
1: तब मैं खुश होंगी. सो द इक्वेशन इज आउटसाइड इन, आउटसाइड का प्रोडक्ट इनसाइड के एनर्जी क्रिएट करेगा.
0: पर ये ऐसा ही तो होता है शिवानी बहन, दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि होता है ना ऐसे. मतलब खुशी मुझे मिलती है इन सब चीजों से. अब अगर वो चीजें नहीं हो रही होगी तो मैं खुश कैसे हो सकती हूँ?
1: खुशी, अच्छा कौन सी चीजों से खुशी मिलती है?
0: अगेन यू नो लाइक अगर वो खुश हो रहे होंगे, मेरा पिज्जा खा के अगर वो खुश हुए तभी तो मैं खुश होंगी ना.
1: मैं खुश हुई इस थॉट को क्रिएट करके कि वो जो मैंने बनाया वो खाकर उनको अच्छा लगा. ये थॉट किसने क्रिएट किया? मैंने. अच्छा लेट्स से वो ही पिज्जा खा रहे हैं अभी अभी, वो बच्चे बहुत खुश हैं, उनको खुश देखकर आप बहुत खुश हो, एवरीवन इज वेरी हैप्पी एंड वन फोन कॉल एंड वन मैसेज. या किसी ने आपको, वो आप घर में हो बहुत खुश हो लेकिन आपके बॉस ने आपको फोन कर दिया और कहा कि आज जो आपने सारा काम ऑफिस में किया था उसमें ये गलती है.
0: बस खुशी गई.
1: अब पिज्जा तो वही है ना, बच्चे भी वही हैं, वो अभी भी खुश हैं. वेयर इज योर हैप्पीनेस गॉन?
0: तो दूसरी सिचुएशन होगी ना. इस सिचुएशन में तुम्हें खुश थी ना, इस
1: सिचुएशन को टाइम तो नहीं लगा ना आके आपकी खुशी को वाइप आउट करने के लिए.
0: तो वो हर सिचुएशन अपने साथ क्या खुशी लेकर या गम लेकर आते.
1: तो नाउ मेरी लाइफ किस पर डिपेंडेंट है?
0: सिचुएशंस
1: पर. सिचुएशंस में भी लोगों पर, लोगों के मूड पर, लोगों के टेम्परमेंट पर. मेरा टेम्परमेंट डिपेंडेंट है, मेरी स्टेट ऑफ माइंड लोगों पर डिपेंडेंट है. हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी? मेरी फिजिकल हेल्थ, लेट्स कीप ऑन कंपेयरिंग इट, बिकॉज तभी समझ में आता है. मेरी फिजिकल हेल्थ बाहर के मौसम, बाहर की इन्फेक्शन, बाहर के बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है.
0: तो मेरा रेजिस्टेंस पावर खत्म है.
1: एग्जैक्टली.
0: यू नो, बिकॉज ये तो होता ही है, जब मेरी रेजिस्टेंस पावर खत्म होती है बॉडी की, तो मुझे सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, मुझे सारा बैक्टीरिया अटैक करता है, सारे वायरस आ जाते हैं.
1: बैक्टीरिया तो ऑलरेडी है, इन्फेक्शन तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर मैं अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखती हूँ, अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रखती हूँ, तो वो मुझ पर अटैक नहीं करता है. लेकिन जैसे ही मेरा इम्यूनिटी सिस्टम क्रैश किया, तो छोटा छोटा वायरस भी, थोड़ा सा मौसम का चेंज मेरे ऊपर,
0: एकदम से सर्दी जुकाम बुखार ये.
1: So here it is, I become, either I'm strong or I become vulnerable. तो strong हूँ तो मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं आता, मौसम भले बदले, बाहर तूफान हो, बर्फ पड़े, I know how to take care of myself. लेकिन मैं अपना ध्यान नहीं रखू और सिर्फ बोलती रहूँ मौसम ही ठीक नहीं है, सर्दी इतनी हो गई है या गर्मी इतनी हो गई है, तो बीमार तो पड़ना ही है, तो फिर बीमार रहिए, no problem, it's a choice. क्या बीमार रहना चाहते हैं या हेल्दी रहना चाहते हैं, दोनों चॉइस हमारे पास है.
0: हाँ, वेरी ट्रू. लेकिन हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है ना, यू नो, व्हेन यू सेड कि इधर यू बिकम पावरफुल और यू रिमेन वल्नरेबल, सो बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू नो, लाइक आई फील दैट दिस इज, आई डोंट हैव द पावर, यू नो, कि मेरे को वो सिचुएशंस अफेक्ट ना करें या मेरी खुशी को ना, यू नो, उस पर ना कुठाराघात करें, तो इसीलिए वो मैं वल्नरेबल हूँ. मैं, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, एक्चुअली वी ऑल अंडरस्टैंडिंग कि फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, कि वी एक्चुअली आर वल्नरेबल, यू नो, चाहे वो फिजिकल है या मेंटल या खुशी की बात है. हम कर क्या सकते हैं?
1: जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं,
0: वैसे
1: ही हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है. ये उस टाइम नहीं होगा जब परिस्थिति आएगी. आप अपने शरीर के अंदर ताकत तब नहीं भरते जिस क्षण मौसम बदलता है, लेकिन आप एवरी डे डेली बेसिस पर अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो बाहर कितना भी परिवर्तन आए, बाहर का परिवर्तन अंदर परिवर्तन नहीं क्रिएट कर देता. यू सी, शरीर फिर भी, उस शरीर के अंदर पावर है कि वो बाहर के परिवर्तन के साथ अडेप्ट करके
0: अपना चल immune जाता system अपना,
1: yes, अगर बाहर से इन्फेक्शन आ रही है लेकिन शरीर के अंदर भी वो
0: एंटीबायोटिक्स, हाँ, वो जो
1: उसको फाइट करेंगे और फिनिश कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं. इसी तरह अगर जैसे शरीर का ध्यान इतना रखते हैं, तो ये सारी चीजें कब आती कब चली जाती पता भी नहीं चलता. अगर मन का भी उसी तरह से ध्यान रखेंगे, हर रोज इसकी सफाई करते रहेंगे, इसको नरिशमेंट देंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो कब क्या बाहर होता जाएगा, आएगा, चला जाएगा, हम उस सीन को क्रॉस करते जाएंगे. फिर आप वो वाला नहीं सेंटेंस बोलेंगे कि अभी अभी अच्छा फिर अभी अभी खराब. दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग. सी, दिस इज हाउ द इंडेक्स इज गोइंग एक्चुअली, कि जैसी सिचुएशन वैसे मेरी हैप्पीनेस, कभी ऊपर कभी नीचे. क्यों? क्योंकि इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग आउटसाइड. अपने आप में इसके अंदर कोई पावर नहीं है. आप अच्छा बोलो तो मैं खुश, आप नहीं बोलो तो मैं नहीं खुश. तो मैं सारा दिन क्या करती रहती हूँ, आपको प्लीज करने की कोशिश करती रहती हूँ, ताकि आप मेरे से अच्छा बोलते रहेंगे, क्योंकि एवरीथिंग आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस. एक्चुअली एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग इज फॉर हैप्पीनेस, लेकिन प्रोबेबली वेयर आई एम डूइंग इट इज समवेयर, यू नो. तो फिर क्या होता, अभी अभी अच्छा था और अभी अभी उसको खराब होने में टाइम नहीं लगता. तो अगर हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड का भी उस तरह से ध्यान रखते जाएंगे, इसलिए हमने उस दिन भी कहा कि ध्यान रखना, तब बैक्टीरिया भले आएगा, कोई कुछ बहुत बुरा कह देगा, कोई नाराज हो जाएगा, बच्चे हमारे से संतुष्ट नहीं होंगे, बॉस फायर कर देगा, ये सब बैक्टीरिया ही तो है जो बाहर से आता है, ये परिवर्तन ही तो है जो सारा बाहर से आ रहा है. आज बच्चे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, कल सडनली रिएक्ट कर गए, कुछ रूडली बोल दिया, कुछ हो गया, परिवर्तन है ना, मौसम में बदलाव आया है. लेकिन मेरे अंदर पावर नहीं है उस बदलाव को फेस करने की. तो जैसे ही वो
0: बदलाव परिवर्तन क्या हुआ, मतलब मौसम के बारिश और व्यवहार की जो बारिश है, उसमें बहुत फर्क है. क्योंकि मौसम की बारिश के लिए मैं छाता लेके जा सकती हूँ, मैं रेनकोट पहन सकती हूँ,
1: प्रोटेक्शन कर रहे हैं ना,
0: घर से बाहर ना निकलूं.
1: जो छाता नहीं लेके जाता
0: वो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ
1: पेड़ के थ्रू भी उसको लाइटिंग हिट की. तो सो जो नहीं प्रोटेक्ट करेगा वो तो सफर करेगा ना, चाहे फिजिकल हो चाहे इमोशनल. अभी हम बोल रहे हैं कि फिजिकल तो बहुत इजी है. क्यों? क्योंकि हमारे लिए फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत इजी लगती है. सेम थिंग कैन हैपन विद इमोशनल प्रोटेक्शन. इमोशनल प्रोटेक्शन भी जब हम अपनी करेंगे तब भी यही लगेगा, तो क्या हुआ उन्होंने रूडली बात कर दी. तो
0: किसी ने मेरे साथ गंदे तरीके से बात की, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे इंसल्ट कर दी, मुझे रिजेक्ट कर दिया, वो मुझे हर्ट नहीं होगा?
1: या डोंट यू थिंक यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन योरसेल्फ? यस, जस्ट हैव टू टेक केयर. एक दिन ध्यान रख के देखना है कि कैन आई डू दैट, या क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि हर एक के व्यवहार को अपने ऊपर हावी होने देता हूँ. क्योंकि इन टूडेज टाइम इट इज रिस्की. इट इज रिस्की अगर हम अपना कंट्रोल सारा बाहर दे देंगे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं.
0: यस, वी ऑलवेज से ना, यू नेवर नो दूसरे व्यक्ति कैसे रिएक्ट करने वाला.
1: एग्जैक्टली, नाउ दैट्स द पॉइंट. सबके व्यवहार आज बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं. मतलब बाहर तो क्यों जाना, अपने घर के अंदर भी अगर हम देखें तो सडनली ये बैठे बैठे अभी गुस्सा क्यों कर रहे हैं, इनको क्या हो गया? क्योंकि हर एक के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और वो कई बार एकदम से. तो लोगों के जो रिस्पॉन्सेज हैं, रिएक्शंस हैं, वो बहुत अनप्रडिक्टेबल हो गए हैं. अब मेरा रिस्पॉन्स आपके रिस्पॉन्स पे क्योंकि डिपेंडेंट है, तो आप जब अनप्रडिक्टेबल होते हो तो मेरा क्या हल होगा अंदर?
0: हाँ, मैं और इनफैक्ट मैंने तैयारी नहीं की हुई होती.
1: मौसम को देखो, मौसम हमें पता है अब गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, फिर ये आएगा, फिर विंटर आएगा, तो इट्स इजी टू मैनेज. जिस दिन मौसम अनप्रडिक्टेबल हो जाए कि अभी अभी गर्मी है, आधे घंटे में बारिश होने लग गई, उसके आधे घंटे में सपोज बहुत ठंड हो गई, तो विल वी बी प्रिपेयर्ड? नो, विल से ये क्या हो रहा है, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर. यू नो, वी विल से आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. वी नॉट प्रिपेयर्ड, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर्स फ्रॉम पीपल. और उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट अब हो गया है कि मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा पहले, बिकॉज येस थिंग्स आर. क्योंकि हर एक के जीवन में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, हर एक ने अपने स्टेट ऑफ माइंड का कंट्रोल सिचुएशन पर दिया हुआ है. जितनी सिचुएशन रैपिडली चेंज होती जा रही है, स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता जा रहा है, और जितना उनका चेंज होता जा रहा है, मेरा चेंज होता जा रहा है. आप सोचो इसकी क्या हालत होती होगी. सारा दिन ये मन सिचुएशंस को भी फेस करता, लोगों के भी रिस्पॉन्सेस को फेस करता, फिर जितना आपका अनप्रडिक्टेबल उतना फिर मेरा भी
0: उतना मेरे को
1: अनप्रडिक्टेबल. फिर मेरा अनप्रडिक्टेबल, तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे?
0: वो इतना अगेन यू नो. और सच बात तो ये है कि कई बार हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है.
1: आप बच्चे के साथ देखो अपना, ठीक है, बच्चा अपने कोई यू नो टीनेज फेज में है, उसके स्कूल में कुछ आज हुआ, कोई बात हो गई, उसने नहीं बताया आपको आकर, लेकिन उसके माइंड में कुछ चल रहा है. अब आपने तो थोड़ा सा कुछ कहा, जो आप हर रोज ही कहते हो वो बहुत प्यार से सुन लेते हैं, लेकिन आज सडनली उसने रिएक्ट कर दिया. दैट इज देयर अनप्रडिक्टेबिलिटी. लेकिन आप अगर अपना ध्यान रख लेते उस टाइम, तो सिचुएशन वहां की वहां ठीक हो जाएगी 5 मिनट के अंदर. लेकिन वो अनप्रडिक्टेबल ऐसे बात की मेरे से, ये कोई बात करने का तरीका, तुमको हुआ क्या है, तो मेरा भी रिस्पॉन्स उसके ऊपर, तुम तो हो ही ऐसे गए हो, बिगड़ गए हो, ये तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ही खराब. यू नो, वी कैन जस्ट गो टू सेइंग एनीथिंग टू देम.

0: करना।
1: लेकिन दूसरे को सुधारना नहीं है, मतलब उसे समझाना तो पड़ेगा। आपने ये कह तो दिया कि उसका अपना गिल्ट, बट वी नेवर फील कि वो गिल्ट फील कर रहा है।
0: यू हैव टू वन स्टॉप एंड आस्क। जब भी आप, चलो दूसरे को छोड़ो, अपना देखो। जब आप गुस्सा करोगे किसी पर, बच्चे पर, हस्बैंड पर या किसी पर, उसके बाद आपको कितना अच्छा फील होता है उसके बाद, है? तो आप ऑलरेडी अपने उसमें गुजर रहे हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, अननेसेसरली पूरा घर का वातावरण कर, तो वो गिल्ट ही तो है ना। और उस गिल्ट में फिर सामने वाले ने
1: कुछ गलत
0: गुस्सा भी कह दिया, फिर ऊपर से ब्लेम भी डाल दिया आपके ऊपर। हाउ फार आर वी एबल टू हैंडल ऑल दिस? एंड ऑल दिस वी से इसलिए हुआ क्योंकि उसने ठीक से बात नहीं की, तो पूरे सिनारियो का ब्लेम भी हम तुरंत उसके ऊपर डाल देते। भले उसने ठीक से बात नहीं की, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट। ठीक है, उसने किस तरह से बॉल मारी, लेकिन आफ्टर दैट द बॉल वॉज इन माई कोर्ट, नाउ आई हैड द पावर। अगर मैंने उसको ठीक से हैंडल कर लिया होता, सिचुएशन वुड हैव बीन समथिंग एल्स ऑल टुगेदर।
1: व्हाट नीड्स टू बी डन देन?
0: स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। यस, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू सी हाउ टू डू, कि जो हमने फोकस चेंज कर दिया था, जो आपने लास्ट टाइम भी कहा कि सिचुएशन पे ध्यान देना है, ये करना है, ये करना है, तो मेरा अपना खुशी और ये सब तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं आ रही। तो ये सब ध्यान देते देते दूसरों का जो इश्यूज उठ रहे हैं सारे, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने इसको लास्ट प्रायोरिटी पर रखा कि मैं खुश नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मुझे काम तो करने दो।
1: Show must go on even if I'm not happy.
0: Yeah, yes. The show is going on, but then look at the quality of the show. So somewhere I will have to stop and say, first I have to be happy, then take care of the show. Pehle I have to be healthy, phir baki jo ye drama enact hota hai hamare jeevan mein sara din, it's just a drama. Every scene I am enacting, quality dekho kya hoti ja rahi hai, aur phir bhi usko घसीटते जा रहे हैं। एक दिन भी रुक कर हमारे माइंड में ये थॉट नहीं चलता कभी कि ये क्या होता है हमारे घर में रोज, क्यों हम हर रोज एक दूसरे के साथ इस तरह से करते हैं। इज देयर अ वे आउट? क्या कोई और तरीका है जीवन जीने का, या दिस इज द वे?
1: Wonderful. Somewhere we need to actually do this analysis within, और ये देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। सुजा शिवानी, बहुत सी बातें अभी बाकी हैं, लेकिन एक अवेयरनेस, एक पहला जो पॉज है वो लेने का वक्त आ गया है कि हम खड़े होकर ये देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। और जैसा आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, हर सिचुएशन में ये देखें कि हम चाह क्या रहे थे। हमने हर सिचुएशन, हर काम इसलिए किया कि हम खुशी चाहिए थी, या इट विल गिव मी हैप्पीनेस, यू नो, इट विल गिव अदर्स हैप्पीनेस, इट विल गिव मी हैप्पीनेस। सो अगेन माय डिपेंडेंसी, माय लाइक खुशी लेने की जो डिपेंडेंसी थी वो सब पे पहुंचती जा रही थी, और वहीं जो है वो बार बार कभी हाँ कभी ना कभी ऐसा चलता जा रहा था। अगेन करना क्या है ये वक्त बताएगा, आने वाली कड़ियां बताएंगी, लेकिन आज की इस बातचीत के लिए एटलीस्ट एक पॉज हमें लेने के लिए प्रेरित करने के लिए थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है, आपका हम स्वागत करते हैं। ये एक ऐसा मंच है जिस पर खुली बात होती है, तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद भावना कुमारी, इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स चेक हो रहा है इन दिनों, तो आप भी सफर में हमारे साथ रहिएगा। कौन सी ऐसी बातें हैं, किन बातों का ध्यान रखने के बाद हम खुशी का अनुभव कर सकते हैं, आने वाली कड़ियों में जानेंगे। अभी विदा लेते हैं। ओम शांति।